0: 101.5 मेगाहर्ट्सवर आम्ही आकाशवाणीच्या अमरावती केंद्रावरून बोलत आहोत. श्रोत्यांनो, यावेळी सकाळचे 6 वाजता आहेत. हिंदीतून दिल्या जाणारं बातमीपत्र आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून आम्ही काही क्षणातच सहक्षेपित करीत आहोत. कृपया प्रतीक्षा करा.
1: और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया. पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं. कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान बढ़ाकर BBB+ से +A- कर दिया है, जबकि आउटलुक स्थिर रखा है. भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है. नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है. लगभग 4,000 लोग अभी भी लापता हैं. भारत से 11 बचाव विशेषज्ञ विशेष उपकरणों के साथ नेपाल के त्रिशूली बाजार के पास पहुंचे. विशेषज्ञ दल आज से नेपाली सेना के साथ मिलकर काम शुरू करेगा. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण 4 सितंबर को करेगा. ये उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए सुबह 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा. भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जिसमें 20 देशों के 100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे. और अंत में महिला एशिया कप 2020 में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा. ये मैच UAE के दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा. तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार.

0: वाणी आकाशवाणी। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जेसीआर ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आम्ही आकाशवाणीच्या अमरावती केंद्रावरून बोलत आहोत 101.5 MHz। श्रोत्यांना सकाळचे 6:05 झाले आहेत। आता ऐकूयात भक्ती संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow karein.
2: सब के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
5: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास प्रभावी आर्थिक नीतियों बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
4: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
6: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना आकाशवाणी समाचार मुंबई।
4: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक

0: तक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगरही, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर की सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती है, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते है, मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना। इसे गाया है रेखा भारद्वाज ने, नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में, गुलजार ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है विशाल भारद्वाज ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए ऋत्विक तलाशिलकर की आवाज में मलाल फिल्म का गाना। गीतकार हैं प्रशांत इंगोले और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: क्लासिक, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
5: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
5: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
5: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
6: श्रोताओं लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में भूल भुलैया 2 फिल्म का गाना। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

खुशी, मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी सजती है, मेरे

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए अल्तमश फरीदी की आवाज में कौसर मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम थे गीतकार और संगीतकार थे देवी श्री प्रसाद। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मनोज तिवारी की आवाज में गैंग्स ऑफ वासेपुर, यह है फिल्म का नाम। वरुण ग्रोवर हैं गीतकार और संगीतकार हैं स्नेहा खनवलकर।

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हमसफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एग्रीमेंट परमानेंट हो गया फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया। पतरे की है मोटर का जानवर सी नहीं वफादार। मरते दम तक चले टमटम तो रुत रंगीन हो जाती है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो एक

तीन हो जाती है। सबकी जुबां पर मेरी कहानी, मुश्किल है यूं मुझको फंसाना। अरे पगला है कोई उसको बताना, वो क्या है मैं कौन हूं ये जान चुकी हूं मैं। उसको अपने साथ ही लाना के दिल ही नहीं लगता। वो रोए तो राजेंद्र, हंसे तो जितेंद्र, हर हीरो की खूबी उसके अंदर। मुझको ये इशारा मिला है कि तूफान में जैसे किनारा मिला है, तेरी नजर पे ही ये मेरी नजर है कि तूने बिठाया है मुझ पे पहरा, आया है जोगी बनके लुटेरा। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होंगी बातें वफा की, सबकी जुबा पर होंगी अपनी कहानियां। अब याद में तेरी कट जाएंगे जीवन के दिन चार, खुश रहना मेरे यार। सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर, बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश। सुरीला सफर का इवेंट है ये, इबारत नहीं अरेंजमेंट है। श्रोतागण भी प्रेजेंट है, अनोखा कंटेंट है, गाने सभी इबारत में ही साइलेंट है, संगीत में सफर में उपस्थित रहने का हमारा भी कमिटमेंट है। आज की कहानी इंसानियत की पहचान कराती है, जो ईमानदार होता है, जो ईमानदार होता है वो वफादार होता है और वो ही परेशान होता है। घोड़ा हाथी की हालत कैसी होती है, जब जरूरत होती है तब तक रखते हैं, उसके बाद मोटर ट्रैक्टर जैसे वाहन काम आते हैं। किसी ने ये मैसेज लिखा है कि वैसे तो मुझे सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुली का एक्सीडेंट हो गया वाला गीत मुझे पसंद है। एक्टर अमिताभ बच्चन इस गीत में बुरी तरह से घायल हो गए थे। और ये अगला कमेंट है कि आज की इबारत में वो गीत जो फिल्मों में पक्षियों, जानवरों, सांपों पे फिल्माए गए गीत हैं, जानवरों का फिल्मों में काम देखकर दर्शक बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। फिल्म नागिन, निगाहें, सूरज और चंदा में सांप पे फिल्माए गए दृश्य बहुत पसंद किए गए। सफेद हाथी, हाथी मेरे साथी, माँ जैसे फिल्मों में हाथी का काम देखने लायक था। और तो और फिल्मों में तेरी मेहरबानियां में तो डॉगी ने कमाल का काम किया था, ऐसे लगा कि फिल्म का असली हीरो तो वही है। ये अगला मैसेज है कि आज की इबारत का सबसे खूबसूरत पहलू उसका भावनात्मक मोड़ है। चंचलता और ठिठोली से शुरू हुआ ये सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसमें गंभीर रुमानी, इकरार और वफा, दर्द और विदाई का संजीदा रंग भी घुलने लगता है। प्यार की कीमत किसने अदा की से लेकर खुश रहना मेरे यार तक पहुंचते पहुंचते ये अल्लड़ दास्तान एक क्लासिक ट्रेजिक रोमांस का रूप ले लेती है, जहां जुदाई का दर्द तो है मगर शिकवे के बजाय महबूब के लिए सिर्फ एक दुआ बची रह जाती है। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना की ये फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें हाथी अपने मालिक का सबसे पक्का और वफादार दोस्त होता है। हाथी और उसके साथी नायक के परिवार की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं। इस फिल्म में हाथी का नाम क्या था और राजेश खन्ना के साथ में अभिनेत्री कौन थी, अपने विचार, अपने जवाब, अपनी बातें हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर कार हो गई, बदला जमाना ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जीवन कोई पहेली नहीं, जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है।

साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप? अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानियां की, जिसमें एक मोती नामक लैब्राडोर ने अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ती रहूंगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरपुरकर, असरानी राज किरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे SH बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूं। तेरी मेहरबानियां फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत के बीच में कुछ बोलों के लिए आवाज दी है हेमा मालिनी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, सारे डायलॉग्स भी आप जानते हैं, तो बताइए कि ये टांगे वाली बसंती की घोड़ी का नाम क्या था? और साथ ही हेमा मालिनी का एक आइकॉनिक डायलॉग भी हमें बताए। और बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम, और ये कालिया और सांभा की भूमिका अदा करने वाले अभिनेताओं के नाम भी बता दें। और ये भी बताएं कि होली कब है, होली ये कौन पूछता था? आपके जवाबों का हमें है इंतजार। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी फिल्में याद आ रही हो तो वो भी आप हमें बताएं।

हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट

हमारे साथियों ने हमें संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। निर्देशक रमेश सिप्पी की इस फिल्म शोले में, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद की जोड़ी ने, 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी, अमजद खान, विजू खोटे, मेक मोहन, और डायलॉग था, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, और यूं के हमें बेफिजूल बात करने की आदत नहीं है। कालिया और सांभा थे एक्टर विजू खोटे और मेक मोहन। बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम था लीला मिश्रा, और फिल्म में गब्बर सिंह बने अमजद खान पूछा करते थे, होली कब है होली।

अब कुछ संदेश भी पढ़ देते हैं कि सुहाना सफर का विषय आज का बहुत काबिले तारीफ है। हम सुन रहे हैं, हमारे यहाँ डुग्गी डॉग नाम का एक डॉग है, तेरी मेहरबानियाँ का गीत सुन मैंने उसे दूध दिया और गीत सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए। बहुत बहुत मुबारकबाद कार्यक्रम के लिए। साथ में बचपन में हम मुंबई में रहते थे, उस समय में करीब 4 साल का था और फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ गया था। जब रामू हाथी को गोली लगती है और वो मर जाता है तो मैं जोर जोर से रोया था और कह रहा था कि रामू हाथी मर गया। सब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ फिल्म है, रामू हाथी मरा नहीं है। तो साथियों, फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए एक अभिनेता ने अपनी आवाज डब की थी, बताइए उस हीरो का नाम। और साथ ही ये भी बताइए कि जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप, ये भी बताइए कि जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, फिल्मों में जानवरों के रोल की बात हो और नाग नागिन की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बॉलीवुड में सस्पेंस और बदले के लिए सांपों का खूब इस्तेमाल हुआ। रीना रॉय और श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल निभाकर बड़ा तहलका मचाया था। जंगल में

शिकार के दौरान कुछ दोस्तों ने एक नाग को मार डाला था। कौन से अभिनेता थे उस नाग की भूमिका में और नागिन बनी रीना रॉय के साथी कलाकार कौन थे, सबकी जानकारी हमें दे दे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म नागिन से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अमरीश पुरी, जिनका नाम था भैरवनाथ, और दूसरे फिल्म का नाम था निगाहें, जिसमें नायक थे सनी देओल, खलनायक थे अनुपम खेर। हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि मेरा छोटा बेटा अभी तक हजारों सांपों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर चुका है, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं कि नाग नागिन, नागमणि, नाग पंचमी, निगाहें, नगीना, नागिन, पुरानी नागिन, नई आई, मिलन की रात, नाचे नागिन, गली गली, दूध का कर्ज, नाग देवी। ये तो पूरी लिस्ट दे दी आपने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में। वो तब तकरीबन बंद हो चुका है। वन्य जीवन कानून के अनुसार अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है, अपराध है।

ने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में। वो तब तकरीबन बंद हो चुका है। वन्य जीवन कानून के अनुसार अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है, अपराध है। नाग नागिन वाली फिल्मों के गीत सुनने में हमें आनंद तो बहुत आ रहा है, मगर डर भी लग रहा है कहीं से कोई सांप ही ना निकल आए। अच्छा, विविध भारती के चाहने वालों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर एकदम लाइव। फिल्म हम आपके हैं कौन में क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा हीरो था टॉफी नाम का डॉग, जो भगवान के सामने से चिट्ठी उठाकर सही इंसान तक पहुंचा देता है। तो टॉफी वो चिट्ठी किस अभिनेता को देता है उसका नाम बताएं, फिल्म के निर्देशक का नाम भी लिख दें। तब तक सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। और ये भी तो बताइए कि हम आपके हैं कौन।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि सलमान खान, माधुरी दीक्षित निर्देशक थे इस फिल्म के, सूरज बड़जात्या, टॉफी जिनको चिट्ठी देता है वो अभिनेता थे मोहनीश बहल।

एक साथी ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन इस पारिवारिक ब्लॉकबस्टर फिल्म में टॉफी नाम का प्यारा सा डॉग एक अहम किरदार में था, जो क्लाइमेक्स में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाकर फिल्म की कहानी को सुखद मोड़ देता है। साइंस कहता है कि सांप के कान नहीं होते, उसे सुनाई नहीं देता, फिर बीन का क्या रोल है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये भी मैसेज मिला है कि आप हमारे हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी रोजाना घर पर जो खाना बनाती है उसमें से पहली रोटी हम गाय के लिए रखते हैं और आखिरी रोटी डॉग को देते हैं, ऐसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, भीरू नाम की स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए बच्चों की गैंग बहुत संघर्ष करती है। भावुक कर देने वाली कहानी थी फिल्म चिल्लर पार्टी में। खुली अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में अल्लाह रखा नाम का बाज मुख्य किरदार के साथ साई की तरह चलता है और दुश्मनों पर हमला कर हीरो की जान बचाता है। तो हीरो की माताजी की भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री कौन थी और किसने उन्हें किडनैप कर लिया था, उस खलनायक का नाम बताएं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मर्द का गीत। इसमें एक घोड़ा और एक श्वान दोनों ही सहनायक की तरह थे जो अंग्रेजों से लड़ते थे। इस गीत में उन दोनों के नाम छुपे हैं, सुनकर बताएं क्या नाम है दोनों के। और गीत में आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीतकार हैं प्रयागराज, संगीतकार हैं अन्नू मलिक, फिल्म का नाम है मर्द।

वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या

मोटर का जानवर से नहीं वफादार ओ खत्म तेल वो तोड़ दे दम मर के दम तक चले ये दम दम अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी की मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ

0: शान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे हैरान है।
1: साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि कुली में अमिताभ बच्चन की माता जी की भूमिका में नजर आई थी वहीदा रहमान, मुख्य खलनायक थे कादर खान। और इस गीत में जो जानवर नजर आए थे उनके नाम थे बादल और मोती। साथियों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। मैंने प्यार किया एक आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म, प्रेम और सुमन की दोस्ती का एक उसूल था कि नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये जो गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, उस कबूतर का नाम बता दीजिए जल्दी से।

साथियों, आवाज थी लता मंगेशकर की। गीतकार थे असद भोपाली, संगीतकार थे राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और उस कबूतर का नाम था हैंडसम। सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। कार्यक्रम सुरीला सफर अब समाप्त होता है।

0: obtain detailed information, he inquired about the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister directed that flood relief operations be continuously monitored and that immediate relief be provided to those affected. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted aerial survey of the flood-affected areas of Farrukhabad district. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning over Bihar, East Rajasthan, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9, Victor Lai of Canada in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence data centers and global capability centers. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने AI डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।

0: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्किल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय के सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर 1 ऑटोमोबाइल

0: ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं के अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
5: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्ण रेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र

ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है अनजाना।

0: मानसिक एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है खिलौना।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो कन्फो ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को अगले गीत में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: विलेन तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
4: रात जी आ रही दिल अंधेरा है, तू जो सजन नहीं मेरा है, मेरा है रात।
2: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
2: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।
2: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
5: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार।

0: मुंबई महानगरपालिकेने वाशीतल्या संदर्भ रुग्णालयातल्या 3 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. हलगर्जी केल्याने एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. एका रुग्णाला मुदत संपलेली सलाईन दिल्याचा दावा रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केला होता. त्यानंतर त्या रुग्णाला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, तिथं त्याचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाने भंडारा जिल्ह्यामध्ये दिला जाणारा शालेय पोषण आहार, अंगणवाडीच्या माध्यमातून दिला जाणारा आहार आणि अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिध्याची पाहणी केली. यावेळी आयोगाने जिल्ह्यातल्या शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार स्वतः खाऊन तपासणी केली. आयोगाला तपासणी दरम्यान 2 शाळांच्या स्वयंपाकघरात उंदरांच्या लेंड्या आढळल्यानं संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. भारत आणि बेल्जियम यांच्यात विविध क्षेत्रांमध्ये सामंजस्य करार. महिला बचत गटांना बँकांकडून कर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचं केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांचं आश्वासन. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड स्थानकादरम्यानची नवीन एक्सप्रेस गाडी रवाना. आणि भारताचा किदांबी श्रीकांत या चायना मास्टर्स सुपर 750 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत दाखल. पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्स वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर आपण ट्यून केलं आहे आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र. श्रोते हो, पुढील कार्यक्रमाची उद्घोषणा लगेचच.
2: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल.
3: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी.
2: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज.
4: यंदा मंगळसूत्र घ्यायचंय पण खास ऑफर हवी, मग चला पुना गार्गे आणि सन्सच्या मंगळसूत्र महोत्सवात. जुन्या सोन्याच्या एक्सचेंज वर 0% घट, सोन्याच्या मंगळसूत्राच्या मजुरीवर 50% सूट आणि हिऱ्यांच्या मंगळसूत्रांच्या मजुरीवर 100% सूट. ही खास ऑफर 6 सप्टेंबर 2026 पर्यंत.
5: पुना गार्गे आणि सन्स, राजापेठ पोलीस चौकी समोर, अमरावती.
1: FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्स वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र. श्रोते हो, आता आम्ही विविध भारती प्रसारण सेवेचे कार्यक्रम सहक्षेपित करीत आहोत.
6: पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में. अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं.
7: बिल्कुल. तो जहाँ अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहां पहुंच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं. तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है. क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, क्योंकि जो आते ही है हमेशा. तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है. इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए.
6: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है. और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो. जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं. और इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं. रंग बिरंगे फल सब्जियां, ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हो वो नानुकुर भी करते हैं,
7: बहुत ज्यादा
6: पसंद नहीं है ये, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा. ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है. दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए.
7: बिल्कुल.

0: और किसी विशेष जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है।
1: हाँ
0: किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उससे उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य के जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि जूस हो गया, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना। कई बार हम देखते हैं ना कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
0: पता ही
1: हैं
0: नहीं चलता है।
1: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान, तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन ले, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो
0: हाँ,
1: हमारी गंदी आदत है ना,
0: बहुत ज्यादा
1: उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय चीनी डालकर हम
0: एकदम
1: पीते
0: कुछ लोग
1: हैं,
0: एकदम
1: शरबत पी रहे हैं
0: शरबत
1: जैसे, है ना, वो कैसे
0: जी
1: पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ है उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए, कभी
0: बिल्कुल
1: कभार
0: बिल्कुल
1: आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
0: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है।
1: हाँ
0: जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए और
1: बिल्कुल
0: भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल। आप
0: जरूरी है
1: अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से
0: बिल्कुल
1: आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना
0: बिल्कुल आपके
1: चाहिए,
0: पेट में गुड़गुड़ होने
1: होने लग जाती
0: लगेगी
1: है। और कई बार पता है हम देर कर देते हैं
0: हाँ
1: तो फिर कई और दूसरे सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं ना। कई लोग
0: बिल्कुल
1: कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो
0: हाँ, या
1: जाएगी,
0: सिर में दर्द हो
1: सिर में
0: जाएगा।
1: दर्द हो जाएगा। तो समय समय पर आप भोजन लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से।
0: बिल्कुल
1: टहले, है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से
0: बिल्कुल
1: पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
0: बिल्कुल और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या एक उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्गों को वो खाना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जा रहा है।
0: हाँ
1: कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को,
0: बिल्कुल
1: ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि
0: बिल्कुल
1: वो चबा नहीं
0: चबनी
1: पाते
0: भा
1: हैं।
0: चबा नहीं पाते
1: तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दे, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दे ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
0: बिल्कुल और
1: आपने
0: थोड़ी सी
1: खाना
0: रोटी
1: तो
0: अगर
1: बना के रख
0: बिल्कुल
1: दिया,
0: और गर्म रहेगी रोटी तो वो कड़ी नहीं होगी।
1: कड़ी नहीं होगी, आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे। जब जब वो खाते खाते खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है।
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, फल है, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले। साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं। पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी है हड्डियों को मजबूत
0: बिल्कुल
1: बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई, और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद। क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना, अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
0: बिल्कुल और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें
1: बताइए।
0: लिखकर। तो एक हमारे श्रोता है जो कहते

0: कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए। बहुत
1: और
0: अच्छी
1: क्या
0: बात
1: लिखा है?
0: है।
1: कुछ और भी लिखा
0: हाँ
1: है?
0: बिल्कुल, लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए। बहुत बढ़िया वृद्धो, ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें। प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा आज चीला बनाया
1: क्या बात है,
0: भाई।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाएं,
0: बिल्कुल।
1: है ना। चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है
0: जी।
1: कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूँ। वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहां सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
0: अच्छा, ये भी अच्छी
1: तो
0: चीज है, घी खाना ही चाहिए। ये सोचते हैं लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए, उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
1: हाँ, लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है ना, अपने
0: हाँ
1: शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं
0: हाँ
1: आपको,
0: बिल्कुल,
1: है
0: हल्का
1: ना।
0: फुल्का ही खाए, बहुत
1: हाँ घी
0: ज्यादा नहीं
1: खाइए लेकिन हाँ
0: खाइए।
1: हिसाब से।
0: हाँ
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। और
0: बिल्कुल
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए, इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में। और ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना न दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो कि लिखते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध, फल, फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी। बचपन के मजे, ये सब बातें इन्होंने लिखी है
1: ये
0: जी।
1: बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती
0: सब कुछ अच्छा
1: तो
0: लगता है।
1: सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब बेकार लगता है।
0: बिल्कुल। और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा।
1: अरे हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
0: बिल्कुल।

0: प्रभातो आरती जब हम स्वस्थ होते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत
0: सुनाई देता है। बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, नीदुमोलु सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीदुमोलु सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार है। और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती है।
0: क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरु में।
0: सबसे बड़ी बात, और देखिए ना मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को ही देखा है ना
1: जी।
0: लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैसे कैसे मृदंग बजाते हैं,
0: गजब गजब। तो जब नीदुमोलु सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, नीदुमोलु राघवैया और नीदुमोलु वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता है। और उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया था।
1: बहुत
0: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे।

0: से उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल, और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राम मोहन राव से प्रशिक्षण लिया और राम मोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तुता के रूप में स्थापित हो गई। निदुमोल सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती, उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुब्बुलक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं। और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
0: और लेते हैं एक अंतराल।
1: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखियों और सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनके मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मानता है।
1: बिल्कुल,
0: तब जाकर वो एक
1: अच्छा एक तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद देने वाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी। उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राम मोहन राव को श्रद्धांजलि दी और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्रागी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निदुमोलु समिति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट

0: अवार्ड पलानी सुब्रमण्य पिल्लई मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं।
1: बिल्कुल, और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमण्या पिल्लई मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलु सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
0: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए, इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: गीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया
1: हाँ बहुत प्यारा गीत
0: है
1: है।
0: ना।
1: और
0: हाँ
1: साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ, थोड़ा सा जाने वाले हैं है ना। और
0: बचपन
1: बचपन
0: की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखा है, सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में,
0: हाँ
1: जो हमें, सिर्फ हमें नहीं थे ऐसे।
0: हाँ उन्हें भी थे,
1: हाँ
0: लेकिन ये बात भी पक्की है कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है अरे
1: हाँ
0: ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा।
1: सच में वो डर रहता है
0: हाँ,
1: एकदम।
0: तो अंकित हो जाते थे उस
1: हाँ
0: बाल मन पे ना, अरे ऐसा नहीं करते, फिर बड़ों के
1: हाँ
0: हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हम बचपन में
1: हाँ
0: समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है,
1: हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा अगर हम
0: पकड़
1: सोए नहीं
0: लेगा, है ना।
1: तो।
0: तो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे, बाल मन था हमारा। तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम
1: बिल्कुल।
0: कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस सब विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: उसमें, वो
0: पास हो
1: विद्या आ जाएगी
0: जाएंगे।
1: हमारे
0: हाँ,
1: अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में। सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं,
1: बिल्कुल।
0: कॉपियों में कितने मोर पंख हैं ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे, कई बार शौकिया भी रखते थे,
1: हाँ
0: किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक
1: तो
0: में
1: मुझे
0: रखा
1: पीली पड़
0: करते।
1: जाती थी, उसको अच्छा लगता था
0: हाँ है ना,
1: देखने
0: तो ये ऐसा भी होता था।
1: में।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहाँ न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहाँ कि अच्छा क्यों नहीं होता, बड़ों ने मना किया है मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा,
0: हाँ
1: है ना, ऐसा होता था ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की।
1: ये जरूर पूछा जाता था कि आंख
0: हाँ,
1: कौन सी
0: तो हम
1: फड़की
0: भी डर के
1: आपकी।
0: मारे पता है क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख पर चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो, इस तरह की
1: हाँ
0: बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो है, परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा, मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते, कहते थे
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और
0: और
1: हमें
0: हमें
1: दूसरा
0: नया
1: दांत।
0: दांत दे दीजिए। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरा दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके कहती सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है मुझे नया दांत दे दो ना। तो ये चूंकि कहा गया होगा ऐसा, और मुझे
1: जी
0: वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ
1: बिल्कुल
0: आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और एक हमारे और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप, तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है
0: कि बिल्ली ने रास्ता काट
1: अंधविश्वास।
0: दिया है।
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना, हम वहीं
0: हाँ
1: रुके रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: खिलते
0: मतलब
1: नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ
1: जी
0: चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो। इसके

0: पेपर में उल्लू, छिपकली, छींक, रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सब के भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे। ये तो होता है,
1: ये तो आज भी होता है,
0: तुम्हारा छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आई है, अब निकलो, है ना, कितना
1: बहुत
0: जीवन
1: बहुत
0: में,
1: सारी चीजें।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे श्रोताएं जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है। तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज तो मैंने भी करी हुई है, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए, बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता की, सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है, मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों

0: टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहे, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जी लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसलिए टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था, बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था, अब क्रिकेट मैच में मैं एंजॉयमेंट के लिए लाइव देखता हूं, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वही सिकंदर।
0: सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तो उठा क्यों, वो बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। यार तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। और मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूंछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: ये तो
0: हमें याद है, हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरी आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे। अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी।
1: गिलहरी हमें पकड़ में कभी नहीं आती,
0: हमें लगता काश ही 25 पैसे दे दे हमको, काश ही 25 पैसे दे दे हमको।
1: तो और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
0: बहुत सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता ने
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने ही अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे 1 महीना मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 महीना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पर बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे 1 आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर 1 आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
0: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1 for sorrow और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2 for joy।
1: हाँ।
0: तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी थोड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बात आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं,
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता
1: है, स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती है वो अपनी रसोई को साफ सुथरा।
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से, बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें, फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें, सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें, सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोंछें, कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग है आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक ब्रिक्स की किचन टेप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बापरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें, घोल चुने, गर्म पानी हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछे ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श है उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं, आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और हमारे एक साथी जो लिखती हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना

0: चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में एकदम घुटन सी ना हो, और धूप आने पर आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं। और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंके नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं भी हो आप धड़ाम से गिर जाएंगे,
0: बिल्कुल।
1: है
0: और
1: ना।
0: बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें तो, क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे ना तो जो खाना पड़ा रह गया अगर वहां पे तो चूहे या इस तरीके की चीजें,
1: हाँ, कॉकरोच
0: कॉकरोच आ
1: है, और
0: जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: है
1: कीट
0: ना।
1: पतंगे जो है वो घर में होते ही हैं। और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो। कई
0: बिल्कुल
1: बार क्या है,
0: खाली डिब्बे जमा
1: दुनिया
0: मत
1: भर
0: करिए।
1: के बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं
0: हाँ
1: शौकिया, और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर, कि शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांझ लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है, और
0: बिल्कुल।
1: फिर ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता
0: और
1: है।
0: वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता है,
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य से तो
0: बिल्कुल।
1: हम खिलवाड़ करते ही हैं। और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा
0: बिल्कुल
1: रखती
0: साफ
1: है और
0: सुथरा
1: अपने
0: रखिए,
1: घर को
0: और
1: भी।
0: जो फालतू के सामान है उनको जमा मत करिए। और
1: हाँ
0: इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं,
1: बिल्कुल।
0: प्यारा सा गीत।

0: आरती, बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का अर्थ क्या होता है? गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो शोभित है, यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिस पर चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं, और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता खुशहाली का रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको ये।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं। तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, महर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: महर से बात कर रहा हूँ।
0: महर से? भाई महर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा जितेंद्र
0: नाम आपका?
1: भाई, जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है मेरी तरफ।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस
1: जीवन कलम
0: अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशियान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य?
0: साक्य। अच्छा, बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है? और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है जी।
0: तो आप,
1: समय के अनुसार धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते हैं अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है
1: जी।
0: जी। बताइए, गानों के शौकीन हैं, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश है, किशोर कुमार है, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा? बताइए फिर, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह
0: जीने की राह।
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने। और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल।
0: जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम, वैसे आवाज तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना जी मंसूरी बोल रही मैडम, फालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए। पानी
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख
1: कमी,
0: जाएंगी।
1: अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं,
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते हैं तो बर्तन में ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर
0: जी
1: में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता है तो बहुत गुस्सा आती, चिल्ला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका कामकाज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, हम बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही, बहुत मुश्किल से निकल रहा।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया। तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया,
0: हाँ,
1: बढ़िया आ रही। तो
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए?
1: मैडम फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल हैं आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट है वारंगाफाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी। ठीक
0: पांडुरंग जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: ठाक है, हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगाफाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे खिचड़ी
0: जी जी जरूर।
1: का। खासियत
0: हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल।
1: बोले तो मसूर मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी, तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती
1: हाँ। नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगाफाटा बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है, तो है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: हाँ, नाश्ते में खिचड़ी मिलती, खिचड़ी और
0: हाँ,
1: भजी मिलता है
0: तो बना
1: कढ़ी
0: भी
1: पास
0: लेते,
1: में।
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन हैं?
1: नहीं, बना लेते नहीं, हम देते ही ग्राहक को।
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ, होटल है, होटल है वारंगा
0: अच्छा,
1: फाटा में, होटल है।
0: क्या बात है। अब देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगा फाटा जाने का।
1: कभी
0: वैसे
1: भी मिलेगा खिचड़ी
0: जी
1: नाश्ता और खुश हो
0: जी
1: जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहां की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला जाए, नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है इस समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का,
0: हाँ,
1: महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर की उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस
1: मैडम जी
0: रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे
1: मैडम
0: हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आस तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी,
0: जी, तो बताइए
1: हाँ जी,
0: वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है।
0: क्या
1: बाकी
0: बात।
1: घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ,
0: क्या खाने को? अच्छा
1: छोले छोले पूरी, छोले
0: अच्छा
1: भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ
1: हाँ जी, हाँ
0: जी,
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी
1: हाँ
0: गीत
1: जी,
0: में
1: हाँ जी,
0: पंजाबी
1: बिल्कुल
0: शब्द
1: मैडम,
0: होते
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक एक लाइन है,
0: हैं। हाँ
1: ओ पेके जान वाली है हाय नी किन्ना, ओ होय नी किन्ना, हाय नी किन्ना चीर लाएंगी, ये गाना पंजाबी है जी हमारा,
0: क्या बात है भाई, बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया।
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर है यहाँ पे, हम भी मशहूर है मैडम यहाँ पे, है ऐसी बात नहीं।
0: अच्छा, आप किस लिए मशहूर है
1: हम
0: भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: रेडियो के लिए मशहूर है, जो कि जब प्रोग्राम चलता है ना
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर
1: हाँ जी,
0: प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: जी,
0: और अपने बारे में
1: सर
0: बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है,
0: अच्छा।
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: जी
1: सैर
0: जी
1: करो, और
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो,
0: बिल्कुल, तो आप अपने
1: और
0: माता
1: उसके
0: पिता की
1: बाद
0: सेवा
1: आ जाए।
0: करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अच्छा बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है
0: अच्छा, ओ
1: मैडम। मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए,
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया,
1: हाँ
0: तो
1: जी, तो
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी
1: बस
0: कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी,
1: बिल्कुल मैडम, यहाँ वहां पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहां ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे हम।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: संघर्ष किया
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: इन्होंने
0: बिल्कुल
1: बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी।
1: शूटिंग में जाता था, मुझे लाइट उसका काम मिला था, लाइट मैन का,
0: अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा,
1: तो
0: वाह
1: फिर
0: भाई,
1: मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं उनके साथ।
0: अच्छा।
1: तो बात कहा सुनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे, कि मैं बिन बताए उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा,
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया, मैंने कहा या तो यहाँ पे मेरा होटल था, उस टाइम 10-10 वर्कर काम करते थे, तो मैं इसी कमांड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहां मुझे झिड़के मार रहे हैं, लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी, अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
0: इसमें

0: तो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहां नहीं रहना चाहते हैं, तो ये आपने अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत
1: सारी
0: पसंद है?
1: फिल्म देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं लाला। बहुत फिल्में देखी है मैडम मैंने, बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका, बहुत
0: क्या
1: फिल्म
0: बात
1: देखी
0: है, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: है। इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी बिना लगता नहीं, हम क्या करें।
0: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का
1: शुक्रिया
0: गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और इतनी
1: शुक्रिया
0: सारी
1: मैडम
0: बातें
1: जी,
0: साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे हैं इज्जत फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ। देखिए मैं पूरी भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी, बिल्कुल।
0: अब बताइए क्या काम काज है आपका, हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
1: जी, बिल्कुल। मैं ट्रेडिंग शॉप है मेरा रायपुर में मोहन जय के नाम से, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन फैशन डिजाइनर है।
0: अच्छी बात है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब करते रहते हैं और उसके बाद जो है देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
0: जी जी।
1: तो वो सब हम एक साथ जो सब काम करते रहते हैं और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं।

0: और उस
1: बिल्कुल
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने?
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी, सुबह वो वर्कशॉप में रहते हैं तो रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते हैं रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो
1: जी जी जी
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है, मैं सभी श्रोताओं को आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है, आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है और उनका जो बाल रूप में हर एक पास में नटखट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मैडम जी।
0: जी जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने, कभी पढ़िए सूर की पद रचना, उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुद्दार का और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी और उसका बोल है, मत गया सुर सारी नगेरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।
2: अरे मच गया शोर

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: खलील अहमद।
0: जी खलील जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम पगला फिल्म है पगला कहीं का, और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये गाना सुनना चाहिए।
0: जी, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे? अच्छा
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा तो भाई, ये तो बहुत बड़ा काम है। ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी।
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: तुम

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सेन मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी, और भोपाल?

0: शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छे हैं जगह बने हैं, बढ़िया है, कमला पार्क है
0: जी।
1: जी मैम।
0: और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज में हम सुनेंगे, हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: जाएंगे।
1: आज भी हम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा, और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहां के?
1: अरे लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ
0: खास हो गया ना
1: मैडम, हाँ
0: आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियां पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: में
0: जाती
1: मैडम
0: हैं?
1: बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है, ये
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियां पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्म आया था, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: मैम एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से, मैं आपको नीम श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं? सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनामर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गामा के साइड में दूध
0: जी,
1: पथरी।
0: तो इस समय वहां पर मौसम कैसा है? ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी,
0: जी,
1: नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम
1: हाँ
0: है?
1: जी, बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ
0: वहां पर
1: जी।
0: खेत के लिए, जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है? मतलब वहां की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी है यहाँ। इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी फसल
1: हाँ,
0: उपजती है ज्यादातर?
1: यहाँ पे ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा, बर्फ गिरती है तो
1: यहाँ
0: आप
1: तीन
0: लोगों
1: फुट
0: को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ बहुत परेशान है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे।
0: जम जाता है बर्फ, और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है, और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनामर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो
1: हाँ,
0: बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे गाड़े कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है,
1: हाँ
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी, और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2876-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश, विविध भारती के फोन एंड सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं और हाँ तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी भी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है, और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर।

बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस, और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती है। पर धीरे धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है, अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प सिद्धि बना देता है मन को। तब मन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है? तुम्हें कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूँ ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो अधूरे होते हैं एक आस में।

शागिर्द फिल्म के इस गीत को स्वर दिया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अगला गीत हम सुनते हैं छिछोरे फिल्म का, जिसे स्वर दिया है तुषार जोशी ने। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन प्रीतम की।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
2: रात जी आ रही दिल अंधेरा है, तू जो सजल नहीं मेरा है, मेरा है रात।
0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
3: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
3: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: फिल्म दम लगा के हईशा के गीत को कुमार सानू और साधना सरगम ने स्वर दिया था। गीतकार थे वरुण ग्रोवर और संगीतकार थे अन्नू मलिक।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यात

0: सार्थक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्ट को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर हे मांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर यांच्यात नवी दिल्ली इथं द्विपक्षीय चर्चा। वाढती वीज बिल आणि कोल वॉशरीजच्या निविदांवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची राज्य सरकारवर टीका। गडचिरोली जिल्ह्यातल्या सिरोंचा तालुक्यात आज पहाटे भूकंपाचे सौम्य धक्के। अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाद्वारा 20व्या आशियाई खेळांसाठी 77 सदस्यीय भारतीय अॅथलेटिक्स संघाची घोषणा। आणि महिला क्रिकेटमध्ये T20 आशिया चषक स्पर्धेत आज भारताचा सामना हाँगकाँग विरुद्ध होणार। आता सविस्तर बातम्या। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बेल्जियमचे पंतप्रधान बार्ट डी वेव्हर यांच्यात आज नवी दिल्ली इथं द्विपक्षीय चर्चा झाली। दोन्ही नेत्यांनी यावेळी द्विपक्षीय संबंधांच्या विविध पैलूंवर तसंच परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा केली। यावेळी विविध क्षेत्रांमधल्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी झाली। संरक्षण सहकार्याबाबत इरादापत्र तसंच नवीकरणीय ऊर्जा, सायबर गुन्हेगारी आणि राजनैतिक प्रशिक्षण या क्षेत्रांमधल्या सामंजस्य करारांचा यात समावेश आहे। महिला बचत गटांना बँकांकडून कर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचं आश्वासन केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिलंय। मुंबईत महिला बचत गटांच्या सदस्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर ते बोलत होते। देशात 6 कोटी लखपती दीदी बनवण्याचं केंद्र सरकारचं उद्दिष्ट आहे। त्यातल्या 3.5 कोटी पूर्ण झाले आहे। उर्वरित लखपती दीदींचं लक्ष्य पूर्ण करण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं ते म्हणाले। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी महागाई, वाढती वीज बिल आणि कोल वॉशरीजच्या टेंडरवरून राज्य सरकारवर आज नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत टीका केली। WCLकडे कोळसा उपलब्ध असतानाही मोठ्या प्रमाणात नव्याने टेंडर काढण्यात आल्याचा आरोप करत हे टेंडर 8 सप्टेंबर पूर्वी रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला। महाजनकोनं खासगी कंपन्यांकडून कोळसा खरेदी करण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला। नाशिकमधील पुरातन दत्त मंदिर हटवण्याच्या मुद्द्यावरूनही पटोले यांनी सरकारवर नाराज व्यक्त केली। गडचिरोली जिल्ह्यातल्या सिरोंचा तालुक्यात आज पहाटे 3.6 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले। भूकंपाची खोली सुमारे 10 किलोमीटर असून त्याचं केंद्र सिरोंचा तालुक्यातल्या राखीव वनक्षेत्र परिसरात असल्याची प्राथमिक माहिती आहे। या भूकंपाचे सौम्य धक्के अहेरी आणि नागेपल्ली परिसरातही जाणवले। भूकंपामुळे कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी झाली नाही अशी माहिती स्थानिक प्रशासनानं दिली आहे। नेपाळमधल्या पुरात मृत्यू झालेल्या भारतीय नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी DNA प्रोफाईल लिंकिंगची प्रक्रिया सुरू आहे। यासाठी संबंधित मृतांच्या नातेवाईकांनी आज संबंधित न्यायवैद्यकीय विज्ञान प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचं आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं केलं। मुंबई, पुणे आणि नाशिक इथं DNA नमुना संकलन आणि संबंधित प्रक्रियेची व्यवस्था करण्यात आली आहे। नेपाळमधल्या पुरात आतापर्यंत 1204 जणांचा मृत्यू तर 4000 अधिक जण बेपत्ता असल्याचं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलंय। बाजारात पुरेशा प्रमाणात अद्याप कांदा नसल्यानं नाशिक जिल्ह्यातल्या बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक कमी होऊन कांद्याला 5330 इतका उच्चांकी दर मिळाला। गतवर्षीच्या तुलनेत कांद्याचे दर दुपटीनं वाढले आहे, मात्र केंद्र

यादों की बारात इस फिल्म का अभी आपने गीत सुना। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में, बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, धुन राहुल देव बर्मन की थी।

0: मानसिक एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
1: दिल तो

0: म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बागबान से। अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, आदेश श्रीवास्तव और हेमा सरदेसाई की आवाजों में समीर के बोल हैं और आदेश श्रीवास्तव का संगीत।
6: Listen up, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.

अगला गीत सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक से, फिल्म कयामत से कयामत तक का स्वर अलका याग्निक, उदित नारायण के, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत आनंद मिलिंद का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर और कल आज रात के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के

से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम सुनेगा। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना के अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 3। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग प्रस्तुत करता है सुबैर खान। हवा महल में रात 8 बजे सुनिएगा नाटिका शराफत। लेखन लोकेंद्र शर्मा, निर्देशन अचला नागर। पर चित्रलोक 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता उत्तम कुमार पर। 10 बजे छाएगी 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। लीजिए कल सुबह के कार्यक्रमों के बारे में सुने। सुबह 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान भाग 301। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह सुनिएगा श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना भाग 4। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलन सवनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कल सुनिएगा भाग 44। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता ऋषि कपूर पर। 10 बजे पिटारा में हेलो फरमाइश, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, संवादक ममता सिंह। 11 बजे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सहेलियों का कार्यक्रम सखी हेलो सहेली सुनेगा दिन में 3 बजे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे गीतों भरी कहानी आखिर कब तक, लेखिका है रश्मि वर्मा, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर कल शाम संध्या रंजन प्रस्तुत होगा आपके लिए। पर संगीत सरिता। 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें। 7:45 सुनेगा फिल्म पत्रकार राजीव विजयंकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत का नवा भाग, प्रस्तुति सुबैर खान की।

कल रात हवा महल में सुनेगा नाटिका हीरों का हार, लेखन रमेश उपाध्याय, निर्देशक सत्येंद्र शरद। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। दस बजे छाए गीत और रात 10:30 पर ढलती जाए रात। 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। नमस्कार।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। ये रचना प्रस्तुत है एस जानकी के स्वर में।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। श्रोताओं, श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। शकुंतला जी, आज की कड़ी में हम वो कौन सी विशेषता है किराना घराने की जिसके बारे में जानेंगे?
2: किराना घराने की विशेषता के

0: परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। श्रोताओं, श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। शकुंतला जी, आज की कड़ी में हम वो कौन सी विशेषता है किराना घराने की जिसके बारे में जानेंगे?
2: किराना घराने की विशेषता के बारे में तो हम बोलेंगे ही, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जयंत जी, संगीत का मुख्य अंग है स्वर, और स्वर के साथ है लय
1: जी।
2: इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। स्वर संगीत की आत्मा है
1: जी।
2: स्वर के बिना संगीत की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यही राग की पहचान, भाव और सौंदर्य का आधार होता है।
1: बिल्कुल।
2: लय संगीत की धड़कन है। लय संगीत की गति, संतुलन और अनुशासन प्रदान करती है संगीत को
1: जी।
2: लय के बिना गायन प्रभावशाली नहीं हो सकता है ना
1: जी।
2: स्वर और लय का संतुलित समन्वय ही उत्कृष्ट संगीत की पहचान है।
1: बिल्कुल।
2: जब स्वर और लय का सुंदर मेल होता है, तभी संगीत श्रोताओं के मन को एकदम वो स्पर्श करती है
1: जी। जी।
2: प्रत्येक घराने में स्वर और लय के प्रयोग की अपनी विशिष्ट शैली होती है, और यही विशेषता प्रत्येक घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान देती है।
1: अच्छा।
2: किराना घराने के बारे में अब स्वर प्रधान उसे माना गया है। इस घराने में स्वर की शुद्धता
1: जी,
2: जैसे मैंने बोल दिया आपको, श्रुति, उसका सूक्ष्मता, उसका जो सूक्ष्म प्रयोग जो हम करते हैं, मिंड पर विशेष बल देते हैं
1: जी।
2: जबकि लय का प्रयोग संयमित और राग के भाव के अनुरूप किया जाता है। इसीलिए वो मैंने बताया ना आपको, सुर गया तो सिर गया, ताल गया तो बाल गए। कहने का मतलब है, लय से स्वर निर्माण नहीं हुई, स्वर से लय निर्माण हो गई, ऐसा ही हमें ग्रहित धरना पड़ेगा। स्वर और लय परस्पर पूरक है
1: जी।
2: फिर भी प्राधान्य तो स्वरों को ही जाता है।
1: बिल्कुल।
2: स्वर की सिद्धि नाद श्रुति से ही होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नाद के बिना गीत नहीं, नाद के बिना स्वर नहीं, नाद के बिना संगीत नहीं, और नाद के बिना जगत नहीं।
1: वाह वाह।
2: इसकी प्रचिति दिखाने के लिए कुछ तो सुनना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। लय और स्वर
1: जी,
2: इसके बारे में अगर आप सोचे, भारतीय संगीत में अग्रगण्य महत्व दिखाने के लिए परिपूर्ण गायकी जो है
1: जी, जी।
2: वो ग्वालियर गायकी के पंडित डीवी पलुस्कर, आपने तो सुना होगा उनका भजन वगैरह
1: जी। बिल्कुल।
2: पंडित डीवी पलुस्कर स्वर प्रधान गायकी, शुद्ध मधुर स्वर और अत्यंत सुरीले स्वरों के कलाकार थे। स्वर और लय का संतुलन, स्वर के सुंदरता के साथ लय का साधा हुआ एक निर्वाह, भावपूर्ण गायन, बंदिश और भजन में शब्द के भावों की सुंदर अभिव्यक्ति, स्पष्ट तान, सीधी स्वच्छ और प्रभावशाली तान, ग्वालियर घराने की छाप, सरल स्पष्ट और राग की शुद्धता पर आधारित उनका जो प्रस्तुतिकरण है
1: जी, जी। तो शकुंतला जी, उदाहरण स्वरूप जो पंडित डीवी पलुस्कर जी की रिकॉर्डिंग हम सुनने वाले हैं, वो किस राग की बंदिश है?
2: वो राग हमीर में है।
1: वाह वाह।
2: बहुत ही प्यारा राग है।
1: हाँ।
2: और बहुत ही अच्छी चीज है।
1: आइए सुनते हैं।

0: जयंत जी, अभी आपने पंडित देवी पलुसकर का ये हमीर सुन लिया
1: जी जी,
0: जिसकी गायकी तो ग्वालियर घराने की है।
1: हाँ।
0: अब ग्वालियर घराने के बाद किराना घराने का जो गाना है
1: जी,
0: उसके बारे में हमारे किराना घराने के विशिष्ट पहचान देने वाले जिसे हम प्रवर्तक कहते हैं
1: जी,
0: खान साहब अब्दुल करीम खान, ये किराना घराना के युग प्रवर्तक गायक
1: जी,
0: उन्हें हम मानते हैं। उन्होंने स्वर प्रधान गायकी, मधुर मिंड, सूक्ष्म श्रुतियां और विलंबित आलाप के माध्यम से किराना घराने को एक नई ऊंचाई और व्यापक प्रतिष्ठा दी है। खान साहब के बारे में बहुत बोलने को तो जी चाहता है, लेकिन उनका गाना ही सुन के हम उसका जो अनुभव लेना चाहते हैं।
1: हाँ।
0: खान साहब का राग शंकरा सुनेंगे।
1: वाह वाह।

0: बहुत ही अप्रतिम ऐसा ये शंकरा
1: जी
0: हमने सुना, खा साहब का ये शंकरा सुनकर।
1: जी जी,
0: वैसे तो कुछ भी और सुनना नहीं है, सिर्फ यही मन में लेकर हमें जाना है ऐसा लगता है, लेकिन सुर का महत्व देने वाला लता जी का सुंदर स्वर जो है
1: जी,
0: वो तो उनको एकदम लगता है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावर करने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आजा नचले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना। सलीम सुलेमान ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक जुंजवारियाशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। ये बंटी और बबली फिल्म का गीत है, आवाजें सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की।

बंटी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। लीजिए आप सुनिए श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला की आवाजों में बिग ब्रदर फिल्म का ये गीत। गीतकार है अनिल पांडे और संगीतकार आनंद राज आनंद।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री

0: किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शेतकरी बंधू भगिनींनो, आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: किसान वाणी हा कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनीवरून.
1: शेतकरी बांधवांनो लक्ष द्या, शेतीशी संबंधित तुमचे प्रश्न, तुमच्या अडचणी आणि तुमच्या अनुभवांवर थेट संवाद साधण्यासाठी ऐका आकाशवाणी मुंबई FM गोल्ड वरील लोकप्रिय फोन इन कार्यक्रम हॅलो फार्मर्स.
2: शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक पद्धती, बाजारपेठ, मूल्यवर्धन, शेतीपूरक व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध संधींविषयी जाणून घेऊया तज्ञांकडून थेट.
1: तुमचे प्रश्न तयार ठेवा आणि सहभागी व्हा हॅलो फार्मर्स मध्ये.
2: तुमचे प्रश्न थेट तज्ञांना विचारा आणि अनुभवी मार्गदर्शनाचा लाभ घ्या.
1: कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी 02245141434 आणि 45151435 या क्रमांकांवर फोन करा.
2: हॅलो फार्मर्स, शेतकऱ्यांशी थेट संवाद
1: ऐका दर सोमवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता 100.1 MHz FM गोल्ड वर, तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वर.
2: प्रायोजक कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.
1: हॅलो फार्मर्स, प्रश्न तुमचे, मार्गदर्शन तज्ञांचे.
0: रात्रीचे 8 वाजतायत. आता महिला T20 आशिया चषक क्रिकेट मालिका 2026 अंतर्गत भारत आणि हाँगकाँग यांच्यात खेळल्या जाणाऱ्या सामन्याचं प्रत्यक्ष वर्णन रेडिओ सेटवर आपण ऐकणार आहोत. अस्मिता वाहिनीचे कार्यक्रम मोबाईल ॲपवर प्रसारित केले जातील.
3: आज कार्य करेगा बरा. सुरुवात भारतीय ओपनर्स के साथ रहने वाली है. भारत की रहते हैं शेफाली वर्मा का पिछले मुकाबले में जो अर्शद के पारी को खेलना था उसने सभी को प्रभावित किया था. उसी बीच इकरा पहली गेंद डालने के लिए तैयार है. लो फुल टॉस के साथ गेंदबाजी की शुरुआत. बहुत ज्यादा गति नहीं थी, पैड्स की तरफ गेंद थी जिसे सीधे बल्ले से खेल दिया गया था. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे मुकाबला खेला जा रहा है और स्मृति मंधाना ने पहली गेंद को बहुत सम्मान दिया है और अच्छी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी आज करनी पड़ेगी. जो ट्रैक है, जो पिच है, उसमें समांतर घास हमें यहाँ पे नजर आती है. भारतीय टीम के स्पिनर्स की वैसे ही हमेशा तारीफ रहती है, चर्चा रहती है, लेकिन यहाँ इस पिच को देख के ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद है. दूसरी गेंद ड्राइव कर दिया गया है कवर्स की तरफ, दो फील्डर्स को भेजती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है. क्या फील्डर जीतेंगे? बिल्कुल जीते हैं. आखिरी क्षणों पे जब कम से कम 2 या 3 फीट का फासला बचा था गेंद और बाउंड्री के बीच, एक अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और कवर्स की दिशा में एक अच्छी फील्डिंग के चलते यहां 2 रन बचाए गए हैं. रोहित, शुरुआत में आपको चाहिए ऐसे फील्डिंग एफर्ट्स, और बीबी जो पिछले मुकाबले में कप्तानी कर रही थी उन्होंने ये फील्डिंग एफर्ट दिखाए हैं.
4: एब्सोल्युटली, आई थिंक मरियम बीबी कम्स इन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई यू वुड एक्सपेक्ट सच स्पेक्टेकल्स फ्रॉम हर.
3: पहले ओवर की तीसरी गेंद, स्मृति ने 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं. बाएं हाथ की बल्लेबाज है. फील्डिंग आपको बता दें, एक खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पे मौजूद. अगली गेंद सीधी जड़ों में, एक यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल करा, गेंद को बेहद नीचे रखा, ज्यादा गति दी नहीं बल्लेबाज को, ना ही कदमों का इस्तेमाल करने का अवसर दिया. और इकरा की यही बात है, यही काबिलियत है, पिछले कुछ मुकाबलों में भी हमने देखा है लेंथ का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती है. पिछली गेंद देख ली थी, गुड लेंथ डिलीवरी थी जिसे ड्राइव करने में कामयाब थी स्मृति, तो इस बार गेंद को थोड़ा और फुल किया यॉर्कर.

0: का प्रयास किया। शुरुआती तीन गेंदे भारत का स्कोर दो रन बिना किसी नुकसान के है। इकरा ने शुरुआत एक डॉट गेंद के साथ की थी और यहां फील्डिंग में परिवर्तन देखने को नजर आया है। एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग पे बुला लिया गया है। ओवर की ये चौथी गेंद, एक और गुड लेंथ डिलीवरी जिसे ड्राइव कर दिया पॉइंट की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। संभवतः शुरुआत में इस प्रकार की झटपटाहट, इस प्रकार की घबराहट इस युवा टीम में होगी। हांगकांग के इस खेमे ने आपको बता दें कि तुलनात्मक तौर पे उतना कमाल का प्रदर्शन नहीं किया है, और हालांकि भारत एशिया कप को 7 बार जीत चुका है तो तजुर्बे की भारत के पास कोई कमी नहीं। अब स्ट्राइक पे आ चुकी है शैफाली वर्मा। पिछला मुकाबला कमाल का रहा था, अर्शद की पारी थी, 64 इनके बल्ले से आए थे। अब देखना यह कि क्या उसी रंग और ढंग के साथ बल्लेबाजी करती हुई नजर आएंगी। अपनी पहली गेंद का सामना कर रही है आज के शाम, और उसी के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करती हुई इकराई है। छोर में परिवर्तन किया था, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक सिंगल और उसी के साथ खाता खोला। जब कोई भी खिलाड़ी खाता खोलता है तो एक अलग तरीके का मनोबल उस खिलाड़ी के अंदर आ जाता है। ऑफ द मार्क अंग्रेजी में जैसे कहते हैं रोहित, वो बहुत महत्वपूर्ण।
1: Absolutely, it gives you the confidence that you're looking forward to, especially when you're coming on the back of a half century. So the first runs, the moment you're getting it out, and the way Shafali Verma got up the mark, it was straight, like it was a low full toss. Of course, there was very little pace on the ball.
0: Over ki aakhri gend, is baar kyunki ek baaye haath ki ballebaaz Smriti ko kara rahi thi, around the wicket aake Ikra ne gend ki single ke saath over samapt hoga, usse khel diya gaya tha offside ki disha mein. To pehle over ki samapti ke baad Bharat ka score 5 run bina kisi nuksan ke, bhale koi boundary nahi aayi ho, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हुई है, जिस संयम के साथ भारतीय टीम ने पहला ओवर खेला है, सराहना करनी होगी।
1: Absolutely, goes without saying, one of the things that we've already seen in the first over is the ball is slightly keeping low, and what Ikra did really well is she bowled those slower ones. What she knows very well is that if you give that kind of pace that Shruti Mandana, she's an excellent driver of the ball, she can play in front of square, she can also place the ball very well. That is why if you're going to bowl it slow, you're going to bowl it low enough and let the pitch do its talking. We've seen this surface where in the last game Chamari Attappattu went on to claim 7 wickets, which tells you a story that this is fairly on the lower side. And then we have the team lists, of course. We'll be playing a significant bit of path as well for Hong Kong. They've made a couple of changes. Carrie Chan coming into the attack, 116 matches, 153 wickets, and definitely her economy of 4.47 will be very, very crucial altogether. And she'll be one of the spearheads for Hong Kong. She'll be going round, in fact, over the wicket to Shruti Mandana, and starts off with a wide, miles down the offside, outside the tram line, nicely collected by the wicketkeeper. And talking about the team lists, the starting 11, of course, for Hong Kong, Natasha Miles returns, Mariam Bibi, Mariko Hill, Joylyn Kaur, Marina, Yasmin, Shanzeen will be also a crucial part of the side. This time loops it up, Shruti picks it up through short mid-wicket, and that'll race away to the boundary. No chance whatsoever for the fielder. That was very well placed and incredibly well timed as well. Even though Shruti would have loved if the ball would have struck the sweet spot of the bat, it came slightly from the lower end.
2: Ankita Apte, Rashtriya Batmya deta hai. Thalak Batmya. येत्या 5 वर्षात व्यापार दुप्पट करण्याचं भारत आणि बेल्जियमचं लक्ष, महिला बचत गटांना बँकांकडून कर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचं केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांचं आश्वासन, एफडीएचे अधिकारी राज्यातल्या महाप्रसाद भंडारा इफ्तारी आणि लंगरची तपासणी करणार, आणि किदंबी श्रीकांत तसंच सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी चायना मास्टर्स सुपर 750 बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत। भारत आणि बेल्जियमनं पुढच्या 5 वर्षात द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बेल्जियमचे प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर यांच्यात आज नवी दिल्ली इथं द्विपक्षीय चर्चा झाली, त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं। याविषयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले,
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है। हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है। हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे, और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों।

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा रॉय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान के तर्ज थे।

बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारा नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी, गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैसलिन रॉयल। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से सुनवाएंगे गाने।

0: जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से

0: हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
2: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
2: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
2: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज़ में। समीर के बोल थे हिमेश रेशमिया का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति

0: और स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
0: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
0: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
5: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स

0: जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुँच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. And now the news in detail. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both the leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. More from our correspondent.
4: Both leaders also welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-EU Free Trade Agreement and called for its timely implementation. They also called for early completion

0: लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाजों में नाइट इन लंदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था ये गीत अभी आपने सुना।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
5: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए।

0: तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
0: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
0: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: इतना

मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश के आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे खयाम। लीजिए अब सुनिए ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पियाए।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन एक उत्तम अभिनेता को।
1: रात भर दाढ़ पेलते पेलते हर मास टूटने लगा। ये भी कोई धंधा है?
2: पहले जब तुम लोग महिम घसल का काला धंधा करते थे तब तुम्हारा हार नहीं टूटता था, हाँ? और अब हमारे साथ मछली मारने का ये इज्जत का धंधा चालू किया तो तुम्हारा हार टूटने लगा। चालो
1: उस्ताद, धंधा सब धंधा है, चाहे मछली मारो चाहे चोरी करो।
2: वाह रे बट्टा वाह, बहुत होशियार हो गया, हाँ?
3: उस्ताद, ये नया पंछी कौन है?
2: बर्ती नहीं देखता, नया इंस्पेक्टर आने वाला था, वही होगा शायद।
1: अच्छा, आदमी दबंग लगता है।
2: अबे बहुत देखे दबंग, हाथी घोड़े बहे गए, गधाइया पूछे कितना पानी। ला मछली ला। ए पदा, ये मछली सीधा कालीगंज के महाजन की गद्दी पर पहुंचा दे, हाँ। और कहना कि हिसाब साफ कर दे, हाँ?
3: अच्छी बात है उस्ताद।
0: जी हाँ, आज जिक्र है बंगला सुपरस्टार उत्तम कुमार का, जो हिंदी की कुछ गिनी चुनी फिल्मों में नजर आए थे। एक उत्तम अभिनेता का हिंदी फिल्मों में इतना कम नजर आना हमारा दिल तोड़ देता है, और उन्हें देखने के लिए रुख करना पड़ता है बंगला सिनेमा का।

आपकी ये रेडियो सखी उत्तम कुमार की बंगला फिल्मों का जिक्र ज्यादा करेगी, लेकिन गीत सुनवाएगी उनकी गिनी चुनी हिंदी फिल्मों की।

कुमार का जन्म सन 1926 में हुआ था। उनका असली नाम था अरुण कुमार चटर्जी। अपने शुरुआती दौर में उत्तम कुमार ने कलकत्ता में बंदरगाह कमिश्नर के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी भी की थी। बाद में वो स्टार थिएटर समूह में अभिनेता बन गए। सन 1949 में मायादुरे नामक एक फिल्म से बतौर एक्स्ट्रा शुरू हुई उत्तम कुमार की अभिनय यात्रा, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी।

उत्तम कुमार का बंगला सिनेमा में सबसे बड़ा योगदान था थिएटर की नाटकीय अदाओं से सिनेमा को मुक्त करना। सहज अभिनय ने उत्तम कुमार को शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्हें जिस फिल्म ने एक चमकता हुआ सितारा बनाया उसका नाम है 75.5। निर्मल डे की इस फिल्म से उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी बनी।

1949 में नवेंद्र सुंदर बनर्जी के निर्देशन में बनी उत्तम कुमार की पहली फिल्म रिलीज हुई थी और बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के टाइटल्स में उत्तम कुमार का नाम अरुण कुमार दिया गया था। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि अरुण कुमार नाम शुभ नहीं है, इसलिए दूसरी फिल्म मर्यादा में उन्होंने अपना नाम अरुण कुमार रख लिया। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई और उत्तम कुमार एमपी प्रोडक्शंस में नौकरी करने लगे। दरअसल नई नौकरी में पुरानी असफलताओं को भुलाने के लिए एक बार फिर उन्होंने एक नया नाम रखा, उत्तम कुमार। ये नाम उनके लिए उत्तम सफलता लेकर आया। एमपी प्रोडक्शंस कंपनी से प्रदर्शित उनकी ये फिल्म बोशु परिवार सुपरहिट रही।

1967 में आलो सरकार की फिल्म छोटी सी मुलाकात के जरिए उत्तम कुमार आए हिंदी सिनेमा में।

बैजंती माला और उत्तम कुमार की जोड़ी वाली ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही थी और इसके बाद उत्तम कुमार दोबारा बांग्ला फिल्मों में लौट गए थे।

0: अभिनेता उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का दिलीप कुमार कहा जाता है। वे बड़े ही मेहनती अभिनेता थे और पर्दे पर इतने सहज, सरल और प्रभावशाली नजर आते थे कि पूछिए मत।
1: महिम प्रधान, इस गंदी नीच औरतों की बुस्ती में तुम
2: कायदे से मधु, इज्जत आबरू सबकी है
1: और इन लोगों की तो इज्जत आबरू है ही नहीं। मैं साले, सब कुछ तो छीन लिया तूने, इस एक औरत को तो छोड़ दिया होता मेरे लिए, यहाँ भी नजर टिका दिया।

0: तो प्यार।
1: उत्तम कुमार सही मायनों में असाधारण अभिनेता थे।
2: काहे अपनी जिंदगी खराब करते हो बाबू, ये शराब जानवर बना देती है।
3: अरे जानवर न बनू तो ये कुत्ते साले गच्चा खा जाएंगे। ला ला बटी ला। और देख कल होली है, जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। ये ले, ये पैसा ले और बस्ती में जाके मार दे।
1: हरा नशूर और शब्दपति आदि बांग्ला फिल्मों में वो एक रूमानी नायक बने, तो दूसरी तरफ विचारक, नेकलेस, चिड़ियाखाना, अपरिचित, नायक, शिल्पी, बड़ी दीदी, श्याम मोचन, साहब बीबी गुलाम, सोनार हारिन आदि फिल्मों में उनकी प्रतिभा खूब खूब चमकी।
4: सलाम मधु बाबू।
3: अरे आओ आओ नसरुद्दीन। सुनाओ बेटे की तबीयत कैसी है?
5: क्या बताएं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर ले जाओ, लेकिन कैसे ले जाएं? थोड़ा सा धान था वो भी पीतू आकर उठा ले गया। कुछ पैसे बाकी थे महिम बाबू, उसी के बदले में ले गया।
3: ए, ए, बला।
4: बोलो सर।
3: ए, 20 रुपए दे दे नसरुद्दीन को।
5: अब आपसे और लूं?
3: अरे रखो रखो नसरुद्दीन, मेरे पास रहे तो दारू शराब में ही जाएंगे। 10-20 रुपए अच्छे कम में लग जाएं तो बुरा क्या है। हाँ रखो रखो।
5: कैसे शुक्रिया अदा करूं मधु बाबू। ए बड़ा भैया, जरा नाव पर नजर रखना, मैं दवाई लेकर अभी आया।
3: ए बेटो, अरे नाव क्यों खोल रहा है?
6: मालिक का हुक्म है, पता है कितना पैसा बकाया है नसरुद्दीन पर?
3: अबे तो उसका धान नहीं उठा ले गया?
6: 4 बोरी धान में क्या सारा कर्जा चुकता हो गया? मालिक ने कहा है जहाँ भी नसरुद्दीन का नाम मिले फौरन कब्जा कर लो।
5: ए पितु भैया, ऐसा जुलम मत करो, मैं धीरे धीरे सब पैसा
3: चुका। इसके नाव छोड़ दे, बाकी पैसा भी ये दे देगा।

0: मैं इनसे कह देना मेरी जमानत है।
1: तेरी जमानत कौन देगा, तेरा बाप?
2: बाप तक पहुँचते हैं।

0: सत्यजीत रे की फिल्म नायक और चिड़िया खाना और सुनील बंद्योपाध्याय की एंटनी फिरंगी उत्तम कुमार की सर्वोत्तम फिल्में मानी जाती हैं। उत्तम कुमार ने कुछ ज्यादा हिंदी फिल्में नहीं की, फिर भी उनकी कुछ प्रमुख हिंदी फिल्में हैं। सन 1974 में आई शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष, जिसमें नायक उत्तम कुमार थे, नायिका थी शर्मिला टैगोर और संगीतकार थे श्यामल मित्रा।
1: ये सब क्या हो रहा है? चलो, चलो फिर अपनी जगह में, चलो, चलो।
2: बच्चों को क्यों डांटती हो? इन्हें मैंने बुलाया है।
1: तुम कौन हो इन्हें बुलाने वाले? क्या लगते हैं तुम्हारे?
2: ये सब मेरे गांव के बच्चे हैं ना।
1: शराबी और आवारा लोगों के सिवा इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं है।
2: रेखा,
1: तुम जैसे जानवर, तुम जैसे गिरे हुए आदमी का असर इन बच्चों पर क्या होगा, ये भी कभी सोचा है?
2: मैं जानवर हूँ, हाँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस घृणा और नफरत ने मुझे क्या बना दिया है?
1: तुम्हारे बारे में सोचने की ना मुझे जरूरत है ना ही फुर्सत। आइंदा या ना हो तो अच्छा होगा।

सन 1977 में शक्ति सामंत की ही फिल्म आनंद आश्रम में नजर आए उत्तम कुमार। इस बार भी नायिका थी शर्मिला टैगोर, संगीतकार भी श्यामल मित्रा।

1979 में भीमसेन की फिल्म दूरियां में सुदर्शन चेहरे वाले नायक उत्तम कुमार बंगला सौंदर्य की प्रतिमूर्ति शर्मिला टैगोर से ये बात कहते नजर आए।

कुमार की आखिरी हिंदी फिल्म थी मेरा करम मेरा धर्म। इस फिल्म में उत्तम कुमार के साथ थे नायक धर्मेंद्र। ये फिल्म काफी समय से बन रही थी और उत्तम कुमार के मौत के बाद रिलीज हुई।

दोस्तों, उत्तम कुमार की स्मृति को नमन करते हुए आपकी ये रेडियो सखी कहना चाहती है कि भारत में सिनेमा का मतलब सिर्फ हिंदी सिनेमा और हिंदी कलाकार नहीं है। क्षेत्रीय सिनेमा में भी कुछ ऐसे कलाकार सक्रिय हैं या सक्रिय रहे हैं जिनकी अभिनय प्रतिभा असाधारण रही है। उत्तम कुमार सर्वोत्तम कोटि के ऐसे ही अभिनेता थे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत घर आंखों से छलक जाए तो लफ्जों की जरूरत है क्या? आंखें बंद कर लेने से ये जज्बात थम जाएंगे क्या? ये तो मोहब्बत है, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी जनाब। लाख कोशिशें कीजिएगा मगर छिपाने से ये छिप जाएंगी क्या?

0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं नखरे तो ना दिखाओगे। नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा कहीं तुम बदल तो ना जाओगे।

ना जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, ना जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर

अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपने दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूं तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम

तुमसे मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूं प्यार की कहानी, प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा, मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
4: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
3: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
4: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं। उस्ताद शायर दाग दहलवी का कलाम समाप्त कीजिए बेगम अख्तर की आवाज़ में। मौसिकी है खयाम की।

0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे लॉडेड द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज